0: Mirchi, it's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू।

0: Kevin Kumar. Follow me on my channel.
1: Mirchi, it's hot.

0: स्टडी ओवर गो होम।
1: क्या आप जानते हो दैट इट इज पॉसिबल कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के साथ दोस्त हो सकते हैं विदाउट गेटिंग नॉटी विद ईच अदर। इट इज ट्रू, इट्स कॉल्ड मैरिज। और अगर आपकी मैरिज भी उस जगह पर पहुंच गई है जहां पर लड़ाई ज्यादा और एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कम, देन मे बी आपको अपने घर की अपहोल्स्ट्री में ब्लू एंड ग्रीन कलर ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज कलर थेरेपी के हिसाब से दैट इज वॉट ब्रिंग्स हार्मनी इन टू अ हाउस। लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप में हार्मनी तो है लेकिन नॉटीनेस की कमी है एंड यू वांट अ होल लिस्ट ऑफ एफ्रोडिसियाक्स, व्हाई डोंट यू हिट मी अप, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो गो अहेड डार्लिंग, फाइंड मी ऑन योर सोशल्स एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: हर फ्राइडे बॉलीवुड हमें बताता है कि उसने इस हफ्ते क्या बनाया, लेकिन हर मंडे ऑडियंस बॉलीवुड को बता देती है कि उसने क्या रिजेक्ट किया। और शायद इसलिए हिंदी सिनेमा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर खड़ा है। आज सिर्फ बड़े स्टार्स काफी नहीं है, सिर्फ बड़े बजट्स काफी नहीं है, सिर्फ नॉस्टैल्जिया भी काफी नहीं है। अच्छी फिल्म हो तो लोग उसे ढूंढ ही लेते हैं, मैं वापस आऊंगा। बुरा रीमेक हो तो लोग उसे छोड़ भी देते हैं, और जो चीज कभी सिर्फ पोस्टर्स और प्रमोशंस डिसाइड करते थे, आज वो प्लेलिस्ट, रिव्यूज और वर्ड ऑफ माउथ डिसाइड करते हैं। यानी बॉलीवुड बदल रहा है, लेकिन उसे बदल कोई और नहीं रहा, आप बदल रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू ड्रॉप ऑफ द मिर्ची टॉप 20। मैं हूं आपका ट्रैवल बडी ऑन दिस राइड सुरेन सुंदरम, एंड वो मंजर आ गया है जहां एक गाने को 13 महीनों बाद शायद हम अलविदा कहने जा रहे हैं। हर जेनरेशन अपनी मोहब्बत को एक गाने में हमेशा के लिए कैद कर लेती है। शायद इस जेनरेशन के लिए वो है सैयारा। नॉट जस्ट अनदर हिट सॉन्ग, ये वो गाना था जिसमें लाखों लोगों ने अपना प्यार, अपना इंतजार और अपना टूटना छुपा दिया। वक्त बदलेगा, महीने बदलेंगे, पर सालों बाद कहीं दिल के किसी कोने में एक सैयारा छुपा होगा।
3: नंबर 20।

कभी कभी बॉक्स ऑफिस एक बहुत खूबसूरत बात सिखा देता है। मैं वापस आऊंगा उसका जीता जागता सबूत है। फिल्म ने शोर मचाकर नहीं, लोगों का दिल जीत कर अपनी जगह बनाई। और शायद हिंदी सिनेमा भी धीरे धीरे कुछ और सीख रहा है। बहुत सालों तक बॉलीवुड ने हमें एक ही तरह की हीरोइन दिखाई, एक तरह का चेहरा, एक तरह की बॉडी, जिसे प्यार सिर्फ कुछ लोगों को ही सूट करता हो ऑन द स्क्रीन। फिर आई अंजलि आनंद, टीवी की सबसे ब्रिलियंट परफॉर्मर्स में से एक, और फिर उन्हें मिली एक फिल्म।

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, डायरेक्टेड बाय करण जौहर हिमसेल्फ। अब उसमें अंजलि का रोल छोटा था, लेकिन वो रोल बन गया बेहद यादगार। एंड अब धमाल 4 में वो सिर्फ फ्रेम का हिस्सा नहीं है, वो लव स्टोरी का हिस्सा है। और मुझे लगता है ये कास्टिंग सिर्फ एक कास्टिंग नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि हीरोइन होने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट्स नहीं, परफेक्ट ऑनेस्टी चाहिए होती है। और अंजलि में वो ऑनेस्टी साफ नजर आती है। सच कहूं, अगर हिंदी सिनेमा वाकई बदल रहा है तो उसकी पहचान उन चेहरों से होगी जिन्हें देखकर ज्यादा लोग कहेंगे ये तो हम जैसे लगते हैं, ये तो हम ही हैं। नंबर 18 पर इस हफ्ते एक नई एंट्री हो रही है, मराठी सेंसेशन संजू राठौड़ की आवाज में रितेश देशमुख और अंजलि आनंद पर पिक्चराइज। दिस वन इज अ रोमांटिक सॉन्ग एंड इस गाने का नाम है साड़ी, फ्रॉम धमाल 4। नंबर 18।

व्याह करवा दो जी, इस हफ्ते नंबर 17 पर है, लेकिन मेरी नजर गाने पर नहीं, हमेशा उसके टाइटल पर ही जाती है। है जवानी तो इश्क होना है, और मुझे सच में लगता है कि बॉलीवुड को फिर से लंबे टाइटल्स याद आने लगे हैं। देखो, हम 90s वाले लोग एक अजीब सी लग्जरी के साथ बड़े हुए थे। उस जमाने में फिल्म के टाइटल सिर्फ नाम नहीं होते थे, पूरे के पूरे इमोशंस होते थे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हमारा दिल आपके पास है, कभी खुशी कभी गम, एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट टू ऑफ माय फेवरेट्स, बोथ ऑफ देम वर सलमान खान फिल्म्स। नंबर 1 पर

0: और ऐसा लगता था जैसे पोस्टर देखने से पहले ही फिल्म आपसे बात कर रही हो। फिर सिंप्लिसिटी ट्रेंड बन गई। अल्फा, एनिमल, सिकंदर, धुरंधर, एक शब्द, एक पंच। सर्च करने में वैसे आसान भी होता है, लेकिन याद रहने के लिए सिर्फ छोटा होना काफी नहीं होता। शायद इसलिए 25-30 साल बाद भी हम उन पुराने टाइटल्स को आज भी पूरा बोलते हैं। एक भी लफ्ज नहीं छोड़ते, क्योंकि वो टाइटल्स नहीं थे, वो बॉलीवुड की वोकैबुलरी बन गए थे। नंबर 16 पर इस हफ्ते वी हैव गॉट द टू वर्ड्स कॉल्ड भूत बंगला, जिसका गाना तू ही दिसदा इज ट्रैकिंग वेल विद द ऑडियंस। लेकिन लंबी टाइटल वाली फिल्मों को याद करते हुए, हियर इज अ मॉडर्न डे फिल्म विद अ लॉन्गेस्ट टाइटल, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। उसका शायद सबसे पॉपुलर एंड येट सबसे खूबसूरत गाना मोहित चौहान इन सुपर फॉर्म, ये है पीलू। प्रीतम दा का म्यूजिक, इरशाद भाई का लिखा, बनाते इसको इस हफ्ते का रिवाइंड।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

I've never cared about box office numbers. मुझे सच में कभी फर्क नहीं पड़ा. अगर पड़ा होता तो पान सिंह तोमर, कहानी, तनु वेजमनु और क्वीन जैसी फिल्में मैं थिएटर्स देखने कभी नहीं जाता. बट 2026 में numbers have started meaning something, right? Cocktail 2 ने अभी हाल फिलहाल ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. एक वक्त था जब ये बड़ी न्यूज हो सकती थी, आज ये बस एक नंबर लगता है. और शायद बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, हमने फिल्मों को देखना कम, उन्हें कंपेयर करना ज्यादा शुरू कर दिया है. एक तरफ धुरंधर जैसी इवेंट फिल्म्स हैं, जिन्हें देखना सिर्फ फिल्म देखना नहीं, एक कल्चरल मोमेंट बन जाता है. नंबर 6.

0: गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर इज अ नंबर 6, एक ऐसी फिल्म जो 3,000 करोड़ के फिगर्स टच कर रही है। एंड देन दूसरी तरफ वो फिल्में जो शायद ओपनिंग वीकेंड की हेडलाइंस ना जीतें, लेकिन वक्त जरूर जीत लेती हैं। सबसे बड़ा नुकसान कलेक्शंस का नहीं हुआ, उस बीच वाली फिल्म का हुआ। वो फिल्म जो ना फ्रेंचाइज थी, ना सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा थी, ना उसके पास 500 करोड़ का बजट था, बस एक ईमानदार कहानी होती थी उन फिल्मों में और उसे कहने का हौसला होता था। सच कहूं, मुझे हिंदी सिनेमा का वही चेहरा सबसे ज्यादा याद आता है, क्योंकि उसी ने हमें कुछ ऐसी फिल्में दी हैं जिन्हें हम बॉक्स ऑफिस से नहीं अपने दिल से याद रखते हैं। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग एक ऐसी फिल्म से है, दम लगा के हायशा अपॉन की आवाज में, दिस इज मोमो के धागे।
1: Special request song.
2: ये

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर टू

0: सिर्फ चार ही हफ्तों में ऊंचा लंबा कद हैज क्लाइम्ड टू नंबर टू। पुराना हुक, नई पैकेजिंग एंड मुझे आनंद राज आनंद साहब के लिए इतनी खुशी हो रही है। उन्होंने कुछ बड़ी फिल्में साइन की हैं एंड द मैन डिजर्व्स इट ऑल। और एक बार फिर बॉलीवुड ने साबित कर दिया है कि सीक्वल सिर्फ फिल्मों के नहीं होते, गाने भी दूसरी जिंदगी जी लेते हैं। लेकिन एक सीक्वल ऐसा भी आ रहा है जहां एक्साइटमेंट फिल्म से ज्यादा उसके म्यूजिक को लेकर है, आवारापन 2। और शायद उसकी वजह यह है कि आवारापन को कल्ट उसकी कहानी ने नहीं, उसके म्यूजिक ने बनाया था। दो गाने ऐसे आए थे जो कभी किसी की प्लेलिस्ट से बाहर ही नहीं निकल पाए।
1: तो फिर आओ मुझको सताओ।
0: And then the one that became a timeless heartbreak classic.

हर सीक्वल पहली फिल्म से बड़ा बनना चाहती है, लेकिन आवारापन 2 को सिर्फ एक चीज मैच करनी है, अपनी वो साउंडट्रैक। और यकीन मानिए, वो एवरेस्ट चढ़ने जैसा चैलेंज है, क्योंकि कुछ एल्बम्स सिर्फ हिट नहीं होती, वो एक जेनरेशन की यादों में परमानेंटली डाउनलोड हो जाती हैं। अगर आवारापन 2 ने वही एहसास फिर से जिंदा कर दिया तो मिलेनियल्स सिर्फ टिकट्स नहीं खरीदेंगे, वो अपनी यादें दोबारा जीने जाएंगे। लेकिन फिलहाल पिछले 20 हफ्तों से यादें नहीं, हिस्ट्री लिख रहा है एक और साउंडट्रैक। 20 हफ्ते ऑफ बीइंग द अनडिस्प्यूटेड नंबर वन, रील से लेकर शादियों तक इंडिया का नंबर वन गाना। जैस्मिन सैंडलर्स, मधुवंती बागची शरारत करने वाले हैं फिर से। नंबर वन।

0: इतने गाने, लेकिन इनमें से कितने अगले हफ्ते तक रह पाएंगे और कितने सालों बाद भी साथ रह जाएंगे। इस सफर का हिसाब किताब हम ही रखते हैं, लेकिन इस बार का हिसाब होता है खत्म। शरारत कंटिन्यूज टू बी द नंबर वन सॉन्ग। मिर्ची टॉप 20 विल बी बैक अगेन विद अनदर एपिसोड। तो अगली बार तक सिरे ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैनहट्टन
3: मैन आदमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

Radio Mirchi, it's hot.

0: Avicii. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे, फिर तू ले जा अपने

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है टू सेट द पॉप क्लॉक ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट गाने हैं, उसमें एक नई एंट्री है। हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना होने वाला है, अ स्पेशल स्पॉटलाइट, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे उतरा है, शुरुआत ही इस हफ्ते के एक धमाकेदार गाने के साथ हो रही है, साडी सुन बाय हर्ष नुसी। हर्ष नुसी एंड दीप क्लेयर की लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विस यादव। गाना कास्टिंग बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है। साडी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद गाना नंबर 9 पर इस अनीश सरकार हृदय का गाना उड़ी उड़ी, जो पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे ड्रॉप हुआ है, चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार है, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक Only on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number 10.
2: हाँ चुप कर लंघ जावे कोल दी तू संघ जावे को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे लोग

0: This one is such a fun song. गाने का नाम है उड़ी उड़ी by अनीश सरकार. हृदय पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके this week on गाना नंबर 9. इस काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो इस काउंटडाउन का सबसे सीनियर सिटीजन है.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par jao. Mujhe follow kare. Mera handle is at RJ Kanika. Follow karna bilkul free hai. At RJ Kanika par koi gaane suggest karne hai, koi baatein batani hai, bindaas aake hit me up. Jo agle wala gaana hai, usse is countdown pe pure 23 hafte ho chuke hain. It's a Coke Studio Bharat song. Jitna khoobsurat ye gaana hai, उतनी ही खूबसूरत इस गाने तक पहुंचने की जर्नी है. आप सोच के देखिए, एक आर्टिस्ट जो सिर्फ अपने बेडरूम में गिटार के साथ कुछ लोगों के लिए गाने लिखता है, बनाता है, वो अपनी जॉब करता है, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, कोई रियलिटी शो स्टार नहीं, कोई बड़ा ग्रैंड लॉन्च नहीं, सिर्फ यूट्यूब के जरिए अपने खुद के लिखे गाने अपनी ऑडियंस को सुनाता है. उसकी ऑडियंस में 5 से 10 लोग जुड़े, 10 से 50, 50 से 100, ऐसे करते करते वो एक दिन कोक स्टूडियो भारत का सबसे बड़ा गाना बनाता है. आई एम टॉकिंग अनूप जैन एंड उनकी जर्नी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वंस दैट वी हैव सीन इन इंडी पॉप म्यूजिक. बट व्हाट आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दिस कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग जो अनूप जैन का है, इसमें ना किसी ने भी किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की कि जी हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है तो आप ऐसे बड़ा ड्रामेटिक गाना बनाओ. प्लेटफॉर्म ने आर्टिस्ट को नहीं बदला बल्कि उनकी दुनिया में वो खुद ढल गए और इसीलिए शायद ये जो गाना आने वाला है वो इतना स्पेशल लगता है. कोक स्टूडियो को हम अक्सर फोक कंटेम्प्रेरी म्यूजिक के फ्यूजन से जानते हैं, लेकिन अनूप जैन का गाना जिसका नाम है अर्ज किया है, That's more than a fusion, it's a literary fusion. जहां उर्दू शायरी मिलती है contemporary pop songwriting से, and Anoop Jain is the king of pop songwriting. And I swear ये गाना इस बात का इतना बड़ा proof है that आज इंडिया का independent music अपने आप में इतना mature, इतना independent हो गया in real sense that बड़े-बड़े platforms like Coke Studio Bharat ना कि सिर्फ उसे पहचान रहे हैं, उसको जगह दे रहे हैं और उसको बिल्कुल भी बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा हमारे हिसाब से. That's why this song sounds so incredible because इस गाने के जरिए अनूप जैन हर उस आर्टिस्ट के दिल की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार ये गाना 6 हफ्ते नंबर 1 पे भी रहा है. पिछले हफ्ते 10 पर आ गया था लेकिन फिर से 2 पोजीशंस ऊपर जंप करके अनूप जैन की आवाज में गाने का नाम है अर्ज किया है दिस वीक ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनका. एंजॉय.
1: नंबर 8.

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 6

0: द वन एंड ओनली दिलजीत दोसांझ, रेजिडेंट डीलर ऑफ सुपरहिट सॉन्ग्स, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके उनका गाना डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले एक नई नवेली एंट्री हुई जसलीन रॉयल का गाना इनाम, जिसने डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू शाइन स्पॉटलाइट ऑन आर इंडी पिक ऑफ द वीक। एंड आज का गाना स्पॉटलाइट इज गाने का नाम है रोज रोज बाय द येलो डायरी फीचरिंग शिल्पा राव, जो साल 2021 में रिलीज हुआ था। आज साल 2024 में हमें रोज रोज आदत है इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन में बड़े बड़े कोलैबोरेशन देखने की, लेकिन 6 साल पहले 5 साल पहले इट वॉजंट लाइक सच अ रेगुलर डील, एंड दैट्स व्हाई दिस सॉन्ग स्टैंड्स आउट। एक वक्त था जब इंडियन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का सपना था कि बस उनका गाना किसी फिल्म तक पहुंच जाए, लेकिन 2019-2020 के दौर से वो उल्टा होना शुरू हुआ था जब फिल्मों के बड़े प्लेबैक सिंगर्स इंडिपेंडेंट म्यूजिक के मीटिंग पॉइंट पे आने लग गए, एंड देन दिस सॉन्ग वॉज अ एब्सोल्युटली जेनरेशनल रेवोल्यूशनरी सॉन्ग। बिकॉज एक तरफ है येलो डायरी, वन ऑफ द बेस्ट इंडी पॉप बैंड्स दैट वी हैव सीन। मुंबई से उन्होंने अपने बैंड की शुरुआत करी, कोई ओवरनाइट वायरल एक्ट नहीं है, सॉन्ग टू सॉन्ग, गिग्स टू गिग्स, कॉलेज फेस्टिवल, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू उन्होंने अपनी ऑडियंस बनाई। राजन बत्रा, उनकी राइटिंग, उनकी ऑल्टरनेटिव पॉप साउंड हमेशा उन लोगों के साथ कनेक्ट करती है, जो लिरिक्स के जरिए गानों में अपनी कहानी ढूंढते हैं। एंड देन दिस सॉन्ग हैज शिल्पा राव। शिल्पा राव हु इज सिनोनिमस फॉर बिग स्क्रीन सॉन्ग्स लाइक खुदा जाने चलिया, और उन्होंने इस गाने को अच्छे से बहुत ज्यादा अच्छा बना दिया। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए फॉर दिस हार्ट ब्रेक सॉन्ग, जहां एक अजीब सी खामोशी के बारे में बात हो रही है, जहां कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ है, बातें हो रही हैं पर असली बातें होनी बंद हो गई है। येलो डायरी का गाना फीचरिंग शिल्पा राव, दिस इज रोज रोज ऑन अ गाना स्पॉटलाइट दिस वीक। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

डूड, दिस इज द सॉन्ग जिसकी वजह से राजन बत्रा मेरे एब्सोल्यूट टॉप फेवरेट वोकलिस्ट बन गए थे. व्हाट अ वॉइस, गूज़बम्स आ जाते हैं उनकी गाने के थ्रू. जो फीलिंग्स बयां करना जा रहे हैं ना, वो इनटू 10 टाइम्स फील होती है. राजन बत्रा की आवाज, येलो डायरीज का गाना फीचरिंग शिल्पा राव, दैट वॉज रोज रोज. अगर इस गाने को थोड़ा भी भूल गए थे तो वापस अपनी सारी प्लेलिस्ट में एड कर लीजिए. वन ऑफ दोज पॉप सॉन्ग्स जो उतने ही बड़े हुए जितने फिल्म के गाने होते हैं. ना काउंटडाउन पे आगे बढ़ने से पहले इट्स टाइम फॉर अ इंडी पॉप क्विज. एट आरजे कनिका पर आओ और मुझे बताओ दैट इंडिया का पहला रियलिटी स्टार कौन था जो एक म्यूजिशियन था. इंडियन आइडल जीते थे, फिर उनका एक गाना आया था जिसमें बारिश हो रही है. कौन थे वो आर्टिस्ट जो एक रियलिटी शो के जरिए मोहब्बतें लुटा रहे थे. एट आरजे कनिका पर जल्दी आके मुझे उनका नाम बताओ. काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हुए वी माइट फीचर हिज सॉन्ग. अभी अप नेक्स्ट काउंटडाउन का अगले वाला गाना इज अ संजू राठौर सॉन्ग. गाने का नाम है बैंगल्स. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बैंगल्स इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 5.

गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4

0: आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां का गाना 11 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जम करके गाने का नाम है ए अजनबी, दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
0: सुन रहे हैं आप। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझसे कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई भी गाना सजेस्ट करना हो, बातें शेयर करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

ओजी भाई कुमार सानू कॉल्ड तेरा मेरा प्यार। इस गाने के बाद इतने सारे मैसेजेस, कहानियां, किस्से सुनाए लोगों ने मुझे अपने कॉलेज रोमांस के। एंड अश्काय और मैं बहुत दिल से बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहते हैं आपको इस सेगमेंट के साथ क्लासिक को इतना प्यार देने के लिए। वी रियली टेक योर रिक्वेस्ट वेरी सीरियसली। जो इस हफ्ते हम गाना फीचर करने वाले हैं वो भी आपकी रिक्वेस्ट से ही बजा रहे हैं। द सॉन्ग वी गोना फीचर दिस वीक इज

The OG pop star song, गाने का नाम है मोहब्बतें लुटाऊंगा by अभिजीत सावंत। मैं ये सबका गाना बन गया था, like एक pop anthem बन गया था, पूरे देश का गाना। साल था 2005, हमारे घर में लैंडलाइन होता था। कॉल करके SMS करके वोट्स भेजे जा रहे थे। पहली बार लगा कि टीवी से हमने किसी को जिताया है और सब उस जीत का हिस्सा थे। हमें मिला हमारा पहला इंडियन आइडल अभिजीत सावंत एंड ये था उनका पहला गाना मोहब्बतें लुटाऊंगा। एंड इवन द सॉन्ग नाउ, जब मैं उस गाने की वीडियो को देखती हूँ विद मच मोर सेंस एंड पर्सपेक्टिव, इट ऑल मेक सेंस। उस गाने के थ्रू वो अपनी जर्नी ही तो बता रहे हैं, दैट थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं एक मिडिल क्लास लड़का था बॉम्बे से, जो एक स्टेज पर खड़ा हुआ और पूरे देश ने मुझे यहाँ जिता दिया, तो अब मैं सिर्फ मोहब्बतें लुटाऊंगा ब्रो। स्कूल में, ट्यूशन में, म्यूजिक चैनल्स पर, रेडियो पर, हर जगह अभिजीत सावंत ही थे। इट वॉज वन ऑफ दोज रियल रेयर मोमेंट्स। पर एकदम सच बताना, दिल के कोने में झांक कर बताना, झूठ मत बोलना मुझे, कहीं ना कहीं हम इस गाने को भूल चुके थे। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, गाना चलते ही यू विल बी ट्रांसपोर्टेड बैक टू दैट सिंपलर टाइम्स। अभिजीत सावंत की आवाज, समीर के लिरिक्स, प्रेम एंड हरदीप का म्यूजिक, 2005 का ये आइकॉनिक इंडी पॉप गाना, दिस इज मोहब्बतें लुटाऊंगा ऑन आग कसेट क्लासिक दिस वीक। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: अभिजीत सावंत की आवाज में दैट वाज मोहब्बतें लुटाऊंगा, बट एक्चुअली यू नो आदर लिरिक्स समीर ने क्या लाइंस लिखी हैं, इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, लाइक एग्जैक्टली टेलिंग अभिजीत सावंत की जर्नी थ्रू दिस सॉन्ग। एट आरजे कनिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, 90s 2000s का वो जो भी इंडी पॉप क्लासिक गाना है जो यू स्टिल लव हमारे साथ शेयर करो। अश्काय और मैं आपकी रिक्वेस्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं, वी माइट फीचर योर फेवरेट नेक्स्ट वीक। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी, दिलजीत दोसांझ एंड सिया का आइकॉनिक कोलैबोरेशन, गाने का नाम है रांझा, फीचरिंग प्रोडक्शन बाय डेविड गेटा। नेवर थॉट आई विल से ऑल दीज नेम्स टुगेदर। 12 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके रांझा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 3।

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाओ, कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई गाना शेयर करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। अक्सर लोग गाने सुन के गानों का नाम भूल जाते हैं और मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, कनिका वो गाना नंबर 5 कौन सा था, जो गाना नंबर 9 पर बजाया वो कौन सा गाना था। सो बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर था हर्ष नुसी का साडी सुन। उसके बाद अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी वॉज ऑन गाना नंबर 9। गाना नंबर 8 पर दिस वीक अनूप जैन का अर्ज किया है।
2: कायर जो थे वो शायर बने।
1: जसलीन रॉयल का इनाम ने डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 7 पर। दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 6।
3: जिधर तू पीछे यातनगी ना चौपर जोगी डब दबीना।
1: संजू राठौर विद बैंगल्स ऑन गाना नंबर 5। स्टूडियो भारत का आदित्य रिखारी रैविट और कुटले खां का गाना ए अजनबी ऑन गाना नंबर 4। दिलजीत दोसांझ सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 3। एंड द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन द हरियाणवी सेंसेशन। 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग यानी गाना नंबर 1 पर है एक बार फिर से शीशा बाय मिट्टा रॉर स्वरा वर्मा, मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन। ये गाना भी 14 हफ्तों से बरकरार है। सो दोनों गाने बैक टू बैक, बैरन ऑन गाना नंबर 2, फिर मिट्टा रॉर का शीशा ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
0: नंबर 2।

0: Mirchi. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तो।

स्टेशन तेरे मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

Madani zani da.

नी तू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

Mirchi, it's hot. 98.3 Mirchi, it's hot.

देखो, अलार्म क्लॉक जो होता है ना, वो तुम्हें सिर्फ उठा सकता है, लेकिन तुम्हारा मूड को उठाने के लिए तुम्हें चाहिए एक शो जिसका नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसला, मैं लेकर आती हूँ हर रोज तुम्हारे लिए शो जो तुम्हारी चाय, कॉफी, ब्रेकफास्ट सबसे ज्यादा गर्म है। अभी आने वाले हैं ढेर सारे बॉलीवुड के बैंगर्स, गॉसिप, गपशप, म्यूजिक, मस्ती एंड ऑफकोर्स अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेरे यानी कि प्रिसला के साथ। फिलहाल अगर तुम ट्रैफिक में फंस गए हो, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, घर से वर्क फ्रॉम होम करने का ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस देने वाले हो, जो कुछ भी कर रहे हो मुझे अपने साथ चिपकाए रखो, और मुझे अपने साथ तुम ऑनलाइन भी रख सकते हो। चेक आउट माय सोशल्स, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रेस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल लगा दे वो मिर्चीदार बैंगर्स जो मैंने अर्लियर प्रॉमिस किए थे तुम्हें, एंड यू स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

अच्छा बताओ, एक दिन के लिए अगर तुम्हें टाइम मशीन मिल जाए तो तुम कौन से साल में जाना चाहोगे? डीएम करो मुझे अभी के अभी, मिर्ची ब्रूस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। नाउ कमिंग टू आवर टाइम मशीन, हम चलने वाले हैं अब आज का दिन क्यों स्पेशल था हिस्ट्री में पता करने के लिए। सबसे पहले चलते हैं 1553 पर, जब लेडी जेन ग्रे इंग्लैंड की क्वीन बनी थी, लेकिन सिर्फ 9 दिनों के लिए, मतलब ये तो फ्री ट्रायल से भी छोटा था। फिर 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में एस्टैब्लिश हुआ, और 1806 में वेलोर म्यूटनी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के सबसे पहले बड़े मिलिट्री अपराइजिंग्स में से एक। बहुत सारे लोग 1857 को याद रखते हैं, लेकिन वेलोर ने रेजिस्टेंस की कहानी उससे बहुत पहले लिखनी शुरू कर दी थी। फास्ट फॉरवर्ड टू 1940, बैटल ऑफ ब्रिटेन ऑफिशियली शुरू हुई, एक हिस्टोरिक एयर कैंपेन दैट चेंज द कोर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। 1948 में लिडा एयरफील्ड कैप्चर हुआ ड्यूरिंग द अरब इजरायली वॉर। 1973 brought celebration as the Bahamas became an independent nation. 1985 mein environmental group Greenpeace ka flagship Rainbow Warrior Auckland Harbour mein blast karke sink kar diya gaya. 1991 mein Boris Yeltsin Russia ke pehle directly elected president bane. और 2019 में एक लेजेंड ने गुडबाय कहा, फोक्सवैगन बीटल की प्रोडक्शन ऑफिशियली बंद हो गई। तो देखा, एक ही डेट कितनी सारी स्टोरीज। अगर तुम्हें कुछ पता है तो तुम मुझे बता सकते हो। इंस्टा आईडी है मिर्ची प्रिज, व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची, और अभी आने वाले हैं मिर्ची दार बैंगर्स राइट हियर राइट नाउ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसला, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे

0: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग। एंड चलो फीफा का क्विक अपडेट देती हूँ मैं तुम्हें।
1: मिर्ची वॉच इट।
0: कल फ्रांस ने मोरक्को से 2-0 से हारकर सेमीफाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। पहले हाफ में ड्रामा था, किलियन एम्बापे का पेनल्टी मिस हुआ, लेकिन चैंपियन वही जो कमबैक करे। सेकेंड हाफ में एम्बापे ने 60th मिनट में गोल मारा और सिर्फ 6 मिनट्स के बाद उस्मान डेम्बेले ने स्कोर डबल करके फ्रांस की टिकट सेमीफाइनल के लिए कंफर्म कर दी। और ये सुनो, एम्बापे अब टूर्नामेंट में 8 गोल्स के साथ गोल्डन बूट रेस में जॉइंट टॉप पर है। लायनल मेसी के एकदम बराबर डेम्बेले भी 5 गोल्स के साथ डेंजरस फॉर्म में है। अब नजरें चिपकी हुई हैं क्वार्टर फाइनल पर, स्पेन वर्सेस बेल्जियम के। विनर सीधा फ्रांस के साथ सेमीफाइनल में टकराएगा। तो अगर तुम लेट नाइट फुटबॉल और अर्ली मॉर्निंग कॉफी दोनों मैनेज कर रहे हो तो कंग्रेचुलेशंस, तुम ऑफिशियली एक देसी एक्सपैट लाइफ जी रहे हो। और वीकेंड पर फुल पैसा वसूल होने वाला नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड, उसके बाद अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड। फुटबॉल फैंस का स्लीप स्केड्यूल जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ होने वाला है, बट क्या फर्क पड़ता है। इसी बात पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी चलाते मिर्ची, दे आर बैंगर्स तुम्हारे लिए, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

अर्ज किया है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही बारिश आने लगी है। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब टाइम आ चुका है वेदर अपडेट का। अभी फिलहाल टेम्परेचर है 73 डिग्रीज फारेनहाइट, स्काईज आर मोस्टली क्लियर, लेकिन फील हो रहा है 74 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास। देखो सुबह 9 बजे तक पार्टली क्लाउडी वाइब्स रहने वाली है, तो मॉर्निंग वॉक या कॉफी रन के लिए परफेक्ट टाइम है, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद ना थंडरस्टॉर्म्स अपनी एंट्री मारने वाले हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। ऑफिस से निकलते वक्त अम्ब्रेला को गोस्ट करना बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं होने वाला है। आज का टेम्परेचर रेंज रहने वाला है 72 से 85 डिग्रीज फारेनहाइट के बीच में, और फील होगा 73 से 86 डिग्रीज फारेनहाइट के बीच में। ह्यूमिडिटी की वजह से थोड़ा सा ज्यादा वार्म फील होगा, मतलब आज एसी और चाय दोनों की थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और रेन लवर्स के लिए अपडेट है, पिछले 24 आवर्स में 7 मिलीमीटर्स की बारिश हुई थी और अगले 24 आवर्स में सिर्फ 2 मिलीमीटर्स की बारिश होने वाली है, तो थोड़ी बहुत गुड न्यूज तो तुम्हारे लिए भी है, राइट? वैसे कल का हाई टेम्परेचर था 82 डिग्रीज फारेनहाइट और आज थोड़ा सा बढ़ाकर 85 डिग्रीज फारेनहाइट तक जाने वाला है, तो आज के दिन भी अपना SPF 50 प्लस प्लस प्लस वाला सन प्रोटेक्शन लगाकर ही बाहर जाना, एंड ऑफ कोर्स कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। और अभी मिर्चीदार वाइब्स बनाए रखो ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं बोले तो प्रिसला तुम्हारे साथ में हो, तुम मुझे अपने साथ ऑनलाइन भी रख सकते हो। इंस्टा और एक्स पे मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

पॉइंट वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स का सेकेंड आवर जहां पर अब हम सुनने वाले हैं मिर्ची आवर का 3 विद मी प्रिसिला। सबसे पहले चाइना ने स्पेस टेक्नोलॉजी में एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया है। लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट ने अपना पेलोड डिप्लॉय करने के बाद सिर्फ 6 मिनट्स में कंट्रोल्ड लैंडिंग की यूजिंग अ जायंट मैकेनाइज्ड फिस्ट लाइक रिकवरी सिस्टम। नंबर 2 पर इंस्टाग्राम यूजर्स थोड़ा सा ध्यान दें। मेटा के नए म्यूज इमेज फीचर से पब्लिक इंस्टाग्राम फोटोज का यूज करके AI जनरेटेड इमेजेस बन सकते हैं। फीचर डिफॉल्ट मोड में ऑन है फॉर पब्लिक अकाउंट्स। अगर तुम अपनी फोटोज और AI रीयूज से बचाना चाहते हो तो प्रोफाइल पर जाओ, मेन्यू पर जाओ, शेयरिंग एंड रीयूज में जाकर अलाउ AI टू रीयूज इंस्टाग्राम पोस्ट्स एंड रील्स के ऑप्शन को टर्न ऑफ कर सकते हो। एंड फाइनली क्रिकेट से सौरव गांगुली को ICC हॉल ऑफ फेम में इंडक्शन के बाद सचिन तेंदुलकर ने कंग्रेचुलेट किया एंड दादा का जवाब था थैंक यू चैंपियन टू बी ऑन द सेम लिस्ट एज यू इज द बिगेस्ट जॉब सेटिस्फैक्शन एवर। एंड सचिन ने भी प्यार से लिखा कि उन्हें इस ऑनर पर बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ है। वाह भाई, ऐसी दोस्ती सबको मिलनी चाहिए। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 विद मी प्रिसिला। मिर्ची मॉर्निंग्स पर बने रहो मेरे साथ एंड इंस्टा और एक्स पर जाकर मुझे फॉलो करो। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसला, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। और एक बॉलीवुड की फील गुड अपडेट बताती हूँ। SRK के शाहरुख खान ने दिल्ली के पंचशील पार्क में वो घर जहाँ शादी के बाद वो और गौरी खान पहली बार साथ रहे थे, अब पूरी तरह अपना बना लिया है। पहले खान फैमिली के पास बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर था और अब बाकी के फ्लोर्स भी एक्वायर करके पूरी बिल्डिंग उनकी हो गई है। और ऑनेस्टली हर देसी एक्सपैट इस फीलिंग को समझ सकता है, चाहे तुम न्यूयॉर्क में हो, न्यू जर्सी में हो या कनेटिकट में हो। दिल में एक घर हमेशा रहता है जहाँ पहली चाय बनी थी, पहली सैलरी सेलिब्रेट हुई थी, या फिर पूरे 6 महीने तक मम्मी की डांट रोज पड़ रही थी, या फिर तुम्हारे डैड ने पहली पहली बार तुम्हें कहा बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू। वैसे SRK का फॉर्मूला कितना सिंपल है ना, सिर्फ बॉक्स ऑफिस का किंग नहीं बल्कि मैं दिलों का किंग भी बनकर रहूंगा। वैसे तुम्हारे पास कोई ऐसा नॉस्टैल्जिक घर है जिसे तुम खरीदना चाहते हो, पूरी तरह अपना बनाना चाहते हो, मुझे बताओ DM करके इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। और अगर आज यानी कि 10th of July को तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है, तो मिर्ची की तरफ से तुमको एक बहुत बड़ा वाला हैप्पी बर्थडे, साथ में जप्पी और पप्पी फ्री। और अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि तुम्हारे साथ कौन से अमेजिंग सेलेब्स हैं जिनका आज हैप्पी वाला बर्थडे है। सबसे पहले बॉलीवुड से नहीं बल्कि हॉलीवुड से सोफिया वर्गारा, जिनका एक्सेंट ब्लॉकबस्टर है। And one of the most brilliant actors Hollywood has, Chiwetel Ejiofor, जिनका आज happy birthday है। साथ में Adrian Greener, pop princess Jessica Simpson, K-drama lovers के दिल की धड़कन Gong Yoo, and साथ साथ में actor and former hockey player Wyatt Russell. And then we also have birth anniversaries of late actor Angus Cloud and the visionary inventor जिनके ideas ने modern technology की foundation को shape दिया है, Nikola Tesla. तो ऑल माई 10th July बेबीज, ड्रीम बिग, लाफ लाउडर। और केक का एक्स्ट्रा स्लाइस जो है ना, आज गिल्ट फ्री खाना, क्योंकि बर्थडे के दिन ना कैलोरीज काउंट नहीं होती है। और तो मुझे एक्चुअल केक नहीं, अपने केक के पिक्चर्स तो भेज ही सकते हो, बर्थडे इनवाइट्स भी वेलकम्ड है। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, दैट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। एंड व्हाट्सएप पर अगर मुझसे बात करनी है तो 9033 मिर्ची इज माई नंबर, दैट्स 9033647244। फिलहाल हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

Mirchi, it's hot.

0: वादे हैं।
1: Gold lovers and jewelry wish listers, time now is for a quick gold rate update on Virchi Mornings. Mera naam hai Priscilla.
2: Jewels wishes everyone happy and healthy morning. Gold rating at $4,150. 4,150 के साथ आज गोल्ड की प्राइस कल से अबाउट $100 चीपर ट्रेड कर रहे हैं। राज ज्वेल्स के साथ इस फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करें। वो खूबसूरत सा तोहफा 22 कैरेट गोल्ड चेन्स, गोल्ड ब्रेसलेट्स, प्लैटिनम चेन्स, प्लैटिनम बैंड्स, प्लैटिनम मेंस कफ। फादर्स डे की सेलेक्शन के लिए घर लेके जाएं और 0% इंटरेस्ट पे 0 डाउन पेमेंट के आज गोल्ड का प्राइस लॉक करें और 9 किश्तों में पैसे दें। आइए फादर्स डे की सेलिब्रेशन में राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
1: देयर यू गो, योर स्पार्कल रिपोर्ट फॉर द डे इज हियर। मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में। मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHYPRIS, और व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

आता है, ना रात को सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. दिस इज द लास्ट आवर ऑफ मिर्ची मॉर्निंग्स एंड नाउ वी आर अप टू US की 1X Technologies ने अपने ह्यूमनॉइड रोबोट नियो के नए रोबोटिक हैंड अनवेल किए हैं. ये हैंड्स इतने प्रिसाइज हैं कि जिप बंद कर सकते हैं, फ्लोर से छोटा सा स्क्रू उठा सकते हैं, लेगो बना सकते हैं और 20 किलो वेट भी लिफ्ट कर सकते हैं. मतलब घर में अगर रोबोट आ गया तो मम्मी का पहला सवाल होगा, बेटा इससे क्या क्या काम करवा सकते हैं. नंबर टू पर इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि कंट्रीज़ को नए ग्लोबल पार्टनरशिप्स बनाने चाहिए और इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इंडिया के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की बात की है. एंड फाइनली ऑस्ट्रेलिया में इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करते हुए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि घर में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है लेकिन चाय भारत वाली बनती है. एंड दैट्स वन वे टू कनेक्ट विद द देसी डायस्पोरा. And that's it for Mirchi Avaka 3 with me, Priscilla. Insta or X pe mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Right now it's time for some Mirchi Dar bangers. Stay tuned and stay hot. Sachin.

0: गुड मॉर्निंग मेरी देसी फैमिली, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स का वो टाइम जहाँ पर हम सितारों की बातें करते हैं, वो भी सुबह सुबह।
1: मिर्ची राशि जोन,
0: इट इज यानी कि मेष राशि। डेडलाइन को कल देख लेंगे मत बोलना, वीकेंड शुरू होने से पहले सारे काम निपटा लो। लकी कलर फॉर यू इज ब्राइट ऑरेंज, लकी नंबर इज 17। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, डाउट को म्यूट करो, बहुत जल्द कुछ एक्साइटिंग होने वाला तुम्हारी लाइफ में, ट्रस्ट द प्रोसेस। लकी कलर फॉर यू इज ब्राउन, लकी नंबर इज 29। जेमिनी यानी मिथुन राशि, आज सब बोलेंगे हमारी बात मान लो, और तुम कहोगे चैलेंज एक्सेप्टेड, मैं अपनी ही करने वाला हूँ या वाली हूँ। लकी कलर फॉर यू इज इलेक्ट्रिक ग्रीन, लकी नंबर इज 8। कैंसर यानी कर्क राशि, किसी की हेल्प करने का मौका मिले तो आज जरूर करो, गुड कार्मा कभी एक्सपायरी डेट के साथ नहीं आता। लकी कलर फॉर यू इज कोरल, लकी नंबर इज 41। लियो यानी कि सिंह राशि, पार्टनरशिप में थोड़ा सा पेशेंस रखो, दोनों मिलके जो कर सकते हो वो अकेले मुश्किल होगा। लकी कलर फॉर यू इज इंडिगो, लकी नंबर इज 3। वर्गो यानी कन्या राशि, सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है, अगर हेल्प चाहिए तो मुंह खोलकर बोलो, लोग माइंड रीडर्स नहीं होते हैं। लकी कलर इज पर्पल, लकी नंबर इज 22। एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन पहला पार्ट। दूसरा पार्ट यानी बची हुई 6 राशियों को लेकर आऊंगी थोड़ी सी देर में मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मेरा नाम है प्रिसला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 4. Stay tuned and stay hot.

0: ऑलराइट, मेरा नाम है प्रिसिला। वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स, जहां पर हम बातें कर रहे हैं सितारों के बारे में।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लिब्रा यानी तुला राशि, गोल थोड़ा सा माउंटेन जैसा लग रहा है। चिल मारो यार, आज कॉन्फिडेंस तुम्हारा बेस्ट जीपीएस है। लकी कलर फॉर यू इज इलेक्ट्रिक ग्रीन, लकी नंबर इज 14। That rhymed. Scorpio यानी कि वृश्चिक राशि, आज काइंडनेस तुम्हारी सुपर पावर होने वाली है। स्ट्रॉन्ग होना अलग बात है और कंपैशनेट होना और भी बड़ी बात है। लकी कलर फॉर यू इज मरून, लकी नंबर इज 6। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, छोटी छोटी बातों पर ना इतना टाइम वेस्ट नहीं किया करते। टाइम इज मनी और मनी को हमेशा बढ़ाना चाहिए। ये वीकेंड जो आ रहा है ये प्राइसलेस होने वाला है तुम्हारे लिए। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 11। केप्रिकॉन यानी मकर राशि, बॉस या सीनियर तुमको नोटिस कर रहे हैं, एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सोच समझकर लेकिन कॉन्फिडेंटली यस बोलना। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक, लकी नंबर इज 27। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आज लक से पहले अपनी थिंकिंग को अपग्रेड करो। पॉजिटिव माइंडसेट ही आज का सीक्रेट वेपन है। लकी कलर इज आक्वा ब्लू, लकी नंबर इज 5। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी कि मीन राशि, आज किसी की मदद करने का चांस मिले तो पक्का से करना। काइंडनेस का रिटर्न गिफ्ट कभी भी मिल सकता है। लकी कलर फॉर यू इज कोरल, लकी नंबर इज 33। And that's it for Rashi's own part 2 with me Priscilla. This is Mirchi Mornings. Connect with me, Insta or X पर मेरा handle name है Mirchi Pris. And WhatsApp करना चाहो तो 9033 Mirchi is my WhatsApp number, 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: झुमका रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट।

बस यार मिर्ची मॉर्निंग्स का शिफ्ट यहाँ पर खत्म होता है। मैं वो प्रिसला तुम्हारे साथ में, लेकिन जाने से पहले तुम्हें बॉलीवुड से एक क्विक अपडेट देकर जाती हूँ। एक्टर राजपाल यादव से जुड़ी एक लीगल डेवलपमेंट सामने आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस केसेस में उनकी कन्विक्शन को अपहोल्ड किया है। कोर्ट ने उनके सातों केसेस में हर एक में 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट रखी है, जो कंकरेंटली यानी कि साथ साथ में चलने वाली है। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि डिस्प्यूट सेटल करने के लिए दिए गए जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरे नहीं हुए, तो इस बात पर उनकी सजा जो है वो अपहोल्ड की गई है। और इस बात से सिंपल सा हमें एक लेसन मिलता है कि कमिटमेंट्स सिर्फ कैलेंडर्स में नहीं, एक्शंस में भी दिखाई देने चाहिए। बाकी लीगल मैटर्स, प्रोसेसेस और प्रोमिसेस जो है उनको टाइम पर पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना लाइफ में ट्रेजेडी आ जाएगी, चाहे आप कितने भी बड़े कॉमेडियन क्यों ना हो। वैसे राजपाल यादव को बॉलीवुड से काफी लोगों से हेल्प भी मिला है। अब आगे हम देखेंगे कि वो इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलते हैं। वी विश हिम ऑल द बेस्ट। एंड इसी बात पर मेरे बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। मैं बोले तो प्रिसला तुम्हारे साथ मिर्ची मॉर्निंग्स पर थी, अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है। तुम फिलहाल अपनी वीकेंड की तैयारी करो, लाइफ को एंजॉय करो और अपना विल पावर अपनी कॉफी की तरह स्ट्रांग रखो। वैसे थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर मॉर्निंग्स विथ मी, तुम्हारे साथ और मिर्चीदार हो जाती है। और अभी के लिए टाटा बाय बाय फ्रॉम माय साइड। मुझसे कनेक्ट करना है तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड।

0: आज उनका बर्थडे है जिन्हें दुनिया संस्कारी बाबूजी के नाम से जानती है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज आलोक नाथ जी का बर्थडे है भाई, जिन्होंने भाग्यश्री, अमृता राव, सलमान खान, मोनीश बहल, इन सब को पाल पोस कर बड़ा किया है फिल्मों में। हालांकि रियल लाइफ में ये खुद मोनीश बहल और सलमान खान से ज्यादा बड़े नहीं है, सिर्फ 6-7 साल का ही फर्क है इन लोगों की उम्र में। लेकिन क्या है ना कि हम सब किसी ना किसी रीजन से पैदा हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आलोक नाथ जी का रीजन इज टू प्ले बाबूजी इन द फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन क्या आपको पता है आलोकनाथ जी के कोई दोस्त नहीं है? वेल, वो इसीलिए क्योंकि वो दोस्ती को रिश्तेदारी में जो कन्वर्ट कर देते हैं। जस्ट किडिंग एंड विशिंग आलोक जी अ वेरी हैप्पी बर्थडे, जिन्होंने हम 90s किड्स के दिमाग में ये सेट कर दिया कि बाबूजी हो तो ऐसे। और इसी के साथ मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए मैं आपसे कहती हूँ कि स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: अगर आप 90s kid हो ना तो इस गाने को तो पहचानते होगे।
2: Boy, boy, bum, bum, bum, boy.
1: गाना भी कह रहा है पहचान कौन?
0: Mirchi, VCR.
1: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा है 90s की सुपरहिट मूवी लाडला, जो कि स्टोरी है एक फैक्ट्री वर्कर और फैक्ट्री की मालकिन के बीच हुई एक ऐसी शादी की जो मालकिन ने अपनी फैक्ट्री के यूनियन लीडर को सबक सिखाने के लिए की। आज के टाइम पर ऐसी स्टोरी पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि आज हम मूवीज में रियलिज्म ढूंढते हैं, लेकिन 90s में मूवीज वर ऑल फिक्शन एंड इमेजिनेटिव। इसी शादी के चलते कैसे घर और फैक्ट्री में ये मालकिन और फैक्ट्री के यूनियन लीडर की नोकझोंक चलती है, ये बड़ा मजेदार है। एंड दिस मूवी वॉज फर्स्ट मेड इन तमिल एंड देन इसका हिंदी वर्जन डायरेक्टर राज कंवर ने बनाया, और तमिल वर्जन भी श्रीदेवी को पहले ऑफर हुआ था लेकिन श्रीदेवी ने इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया था। बट तमिल में ये फिल्म सुपर हिट हुई एंड देन आई गेस श्रीदेवी रिपेंटेड नॉट डूइंग दिस फिल्म। लेकिन जब इस मूवी को हिंदी में बनाना डिसाइड हुआ तो श्रीदेवी वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस। वो इस फिल्म की चॉइस तब बनी जब मूवी की शूट 80% कम्प्लीट हो चुकी थी। लेकिन फिर भी इस फिल्म को दोबारा क्यों शूट किया गया, इसके पीछे एक कहानी है, बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। अभी के लिए यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: अनिल कपूर और श्रीदेवी की मूवी लाडला श्रीदेवी के इस फिल्म में काम करने से पहले ही 80% कंप्लीट हो चुकी थी।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड एक्चुअली इस फिल्म में दिव्या भारती वाज डूइंग द फीमेल लीड ऑपोजिट अनिल कपूर, और उन्होंने मूवी की शूट 80% कंप्लीट भी कर ली थी, लेकिन फिर वी लॉस्ट हर टू अ टेरिबल एक्सीडेंट और फिल्म की शूट अभी बाकी ही थी, जिसके लिए राज कंवर को दिव्या भारती वाले सारे सीन्स दोबारा शूट करने पड़े। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि दिव्या की याद में कुछ लॉन्ग शॉट्स को फिल्म में यूज भी किया गया है। एंड व्हेन ये डिसाइड हुआ कि नाउ दे नीड अनदर एक्ट्रेस टू डू द लीड रोल, तो काफी सारे नामों को खंगालने के बाद श्रीदेवी का नाम आया। एंड सिंस श्रीदेवी वाज वेल अवेयर कि इस फिल्म का तमिल वर्जन वाज अ हिट, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हाँ बोलने में देर नहीं लगाई। एंड दिस इज हाउ द फिल्म गॉट कम्प्लीटेड। आई समहाउ फील कि अगर दिव्या भारती की लाइफ पर कोई फिल्म बनाए ना, तो वो भी कितनी हिट होगी यार, क्योंकि दिव्या भारती इज एन एक्टर अचीव्ड सो मच एट सच अ यंग एज एंड देन डाइड टू एट अ वेरी यंग एज। क्या आपने भी 90s में दिव्या भारती का पोस्टर अपने रूम में लगाया था? मैंने नहीं, बट हाँ मेरी कजिन के रूम में डेफिनेटली था। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hey Poo, movie tonight?
1: ये डायलॉग एपिक तब बना इन कभी खुशी कभी गम जब पू ने जवाब दिया टेल मी हाउ इट वॉज
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा और यही वो रोल है जो करण ने पहले जॉन इब्राहिम को ऑफर किया था या रॉबी का रोल, लेकिन जॉन पोलाइटली डिक्लाइन द ऑफर क्योंकि ही न्यू उनका पोटेंशियल कितना ज्यादा है, जिसे शायद करण उस वक्त नहीं देख पाए थे और नहीं पहचान पाए थे, और उनकी फिजिक को देख कर उन्हें सुपरफिशियली जज कर लिया गया था, जिसका मजे मजे में जॉन इब्राहिम ने कॉफी विद करण पर जिक्र किया और मजाक बनाना नहीं भूले, विच क्लियरली स्पोक अबाउट द फैक्ट कि उन्हें इतना छोटा सा रोल ऑफर होना बाय करण बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तभी तो फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: इस गाने की इंटेंसिटी ना उसी इंसान को समझ आ सकती है या तो जो प्यार में है या फिर कभी प्यार में पड़ा है, क्योंकि बिना इस इमोशन को जिए आप इस गाने की गहराई को समझ नहीं सकते हो। हालांकि हरिहरन साहब और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में ये गाना लगता बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर आप प्यार में हो या कभी पड़े हो ना, ये गाना डबल खूबसूरत हो जाता है।
1: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा। और 90s के गानों को लेकर अगर आपकी पहचान बड़ी पुख्ता है ना, तो आओ बॉस, मान ना मान करो गानों की पहचान। सो बेसिकली मैं आपके लिए दो गानों की म्यूजिक को मिक्स करके चलाने वाली हूँ और आपको पहचानना है उन धुनों को सुनने के बाद कि ये दो गाने हैं कौन से आखिर। और आज का मिक्स मैंने तैयार कर लिया है। हाँ, मतलब छोटी मोटी 90s की डीजे बन गई हूँ मैं मिड डे मोहब्बत पर, तो ये मिक्स मैं आपके लिए चला रही हूँ, पहचानिए जरा।

ओके और अगर आप इन धुनों को पहचान चुके हैं, इन गानों को पहचान चुके हैं, तो फटाक से डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, अपना नाम, इन दोनों गानों का नाम और अपने शहर का नाम लिखकर मुझे भेजो। एंड स्टे ट्यून्ड रहो विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: गैंगस्टर मूवी का ये गाना।
1: लम्हा लम्हा दूरी यो पिघलती है, जाने के साग में ये शबनम जलती है।
0: इस गाने की धुन डाका डाल कर लाई गई है बॉस।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, गैंगस्टर मूवी में धक्का तो मुझे तब भी नहीं लगा था इतना ज्यादा जब इमरान हाशमी की आइडेंटिटी मूवी में रिवील हुई थी, बल्कि धक्के तो अब लग रहे हैं भाई, कॉज आज मुझे पता लगा कि दिस गाने की धुन इज नॉट ओरिजिनल। इस गाने की ओरिजिनल धुन कम्स फ्रॉम अ पाकिस्तानी मूवी और वो कुछ यूं है।
1: कल सब देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में,
0: जिसे गाया वारिश बेग ने है। और अगर आपके पास भी 90s या अर्ली 2000 के गानों और फिल्मों की पोल खोलने के लिए ऐसे राज है कि वो कहां से कट कॉपी और पेस्ट की गई हैं, तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। मुझे बड़ा मजा आएगा मिर्ची पर उनकी पोल खोलने में। तो आप तो मुझे बस DM करिए ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इज हॉट।

0: लाइफ में। सारा जमाना
1: सारा का दीवाना। मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: अगर मैं लाइफ में इरेजर या वाइटनर का इस्तेमाल कर पाऊँ ना, तो मैं ना इसे अपने स्कूल के आखिरी दिन पर लगाऊंगी, ताकि स्कूल के वो दिन खत्म ही ना हो पाए जब लाइफ वॉज ऑल अबाउट स्कूल, दोस्त, एंडलेस मस्ती और एग्जाम्स के अलावा नो टेंशन इन लाइफ। मैं इरेजर और वाइटनर यूज करना चाहती हूँ उस दिन पर जब गर्मियों की छुट्टियों के बाद हम कजिन्स एक दूसरे को नानी के घर से गुड बाय बोलकर अपने अपने शहर वापस जा रहे होते थे। मैं इरेजर और वाइटनर से वो दिन मिटाना चाहती हूँ जब घर पर पहला एसी आया और हमारा छत पर सोना बंद ही हो गया। मैं उन सभी तारीखों को इरेजर और वाइटनर से मिटा देना चाहती हूँ जो एक खूबसूरत जिंदगी के एक खूबसूरत एहसास का आखिरी दिन थे, ताकि वो खूबसूरत दिन हमारी जिंदगी में कभी खत्म ही ना हो पाए। अगर आपको भी ऐसा करने को मिले तो आप इरेजर और वाइटनर को क्या मिटाने में इस्तेमाल करोगे? डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा। अभी के लिए अगला गाना आ रहा, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

यार ये जो इरेजर्स और वाइटनर्स हम स्कूल में यूज किया करते थे ना, मेरा दिल कभी कभी कहता है कि काश कि आज हम बड़े होने के बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते, लेकिन पेपर पर नहीं।

0: इन अ टाइम जब मॉडल्स एज एक्टर्स हिट नहीं हुआ करती थी, पूजा बत्रा ने लोगों के दिलों पर छाप छोड़ दी. बट वेयर इज शी नाउ?
1: मिर्ची पे 90s की आंखों का तारा.
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And Miss Asia Pacific में रनर अप रहने के बाद एक टीवी कमर्शियल से ये नजर में आई एंड देन फिल्मों में नजर आई एंड बॉलीवुड में कई मूवीज में काम करने के बाद अचानक इन्होंने फिल्में छोड़ दी जब इन्होंने कनाडा बेस्ड डॉक्टर से शादी कर ली और वहाँ उन्होंने एक बॉलीवुड रेडियो स्टेशन भी शुरू किया जहाँ पर वो सिर्फ स्टेशन के ऑपरेशन ही नहीं देखती थी बल्कि शी वॉज ऑल्सो एन RJ ऑन हर चैनल. बट सैडली हर मैरिज डिड नॉट वर्क आउट and this couple got divorced aur phir wo India wapas aa gayi and currently she is now happily married to the actor Nawab Shah aur wo ab jewelry brands ke liye modeling karti hui aur kafi sare public events mein apni presence mark karti hui nazar aati hai. But yeah, कहीं ना कहीं दिल ये चाहता है कि वापस से उन्हें स्क्रीन पे देखा जाए. You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on मिर्ची. It's hot.

0: एदिल है मुश्किल फिल्म में जब ब्रेकअप सॉन्ग आया तो लगा कि यार पहली बार हमें ब्रेकअप सॉन्ग मिला है, वो भी हैप्पी वाला। बट नॉट रियली, यू नो 90s का ब्रेकअप सॉन्ग इज दिस गाना जो कि शान की आवाज में है।
1: मिर्ची 90s का सेट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड तन्हा दिल एल्बम से दिस गाना।
2: भूल जा जो हुआ उसे, भूल जा, है कसम तुझे, मुस्कुरा।
0: दिस अकॉर्डिंग टू मी इज 90s का ब्रेकअप सॉन्ग जो बॉस आज भी एप्लीकेबल है, क्योंकि वाकई में यार जो हुआ उसे भूल जा, क्योंकि जो हुआ उसे बदल तो सकते नहीं है ना, तो भूल जाना इज फार मोर बेटर देन रिवाइंड पर प्लेइंग पास्ट रिलेशनशिप की कैसेट इन योर हेड। और यही गाना आज आपकी 90s कैसेट की प्लेलिस्ट के लिए सजेस्ट करते हुए नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप तो अपना अच्छा खासा ख्याल रखना, और मुझे अगर कहीं ढूंढना है तो मेरा पता है Instagram handle मिर्ची सारा। With this, time for me to say bye. Stay tuned to मिर्ची, it's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani jeans with Charu, only on Mirchi.

कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक जब 4 साल के थे तो उनके मामा गोविंदा उनको कंधे पे बिठा के वैष्णो देवी लेके गए थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई ये स्टोरी उन्होंने काफी टीवी शोज में शेयर भी की है और सीन कुछ यूँ था कि गोविंदा ने अपनी सिस्टर के लिए मन्नत मांगी थी और जब वो मन्नत पूरी हो गई और वो मन्नत जब 4 साल की हो गई यानी कि कृष्णा अभिषेक, तो वो उनको अपने कंधे पे बिठा के वैष्णो देवी लेकर गए और वहां से जब वो वापस आए तो उनके पैर सूज गए थे, पैरों में दर्द बहुत था। इस वजह से गाने की शूटिंग होनी थी, राकेश रोशन साहब की फिल्म का वो गाना था, वो एक दिन आगे पोस्टपोन कर दिया गया। तो भी गोविंदा के पैर में काफी दर्द और सूजन वगैरह थी, पर उन्होंने क्या डांस किया, वही गाना सुनते हैं यहाँ पर। राजेश रोशन साहब का कंपोज किया हुआ, इंदवर साहब का लिखा हुआ, मोहम्मद अजीज साधना सरगम की आवाज, फिल्म का नाम खुद गर्ज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3
0: मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

1985 की फिल्म साहब में मेन हीरो यानी कि अनिल कपूर को एक फुटबॉल प्लेयर दिखाया गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये सोचिए 1983 में हमने वर्ल्ड कप जीता था, क्रिकेट इतना पॉपुलर था तब, और तब किसी फिल्म में हीरो को फुटबॉल प्लेयर दिखाया जाए। वेल, इसकी एक वजह ये भी है कि एक बंगाली फिल्म का रीमेक थी और बंगाल नॉर्थ ईस्टर्न साइड फुटबॉल गेम कितनी पॉपुलर है ये हम सब जानते हैं। खैर, कई बार सोच के बुरा भी लगता है कि ये गेम इतनी पॉपुलर है, इस गेम से जुड़ा इतना टैलेंट है हमारे देश में, तो भी इंडियन फुटबॉल को बढ़ावा देने की, उसे सपोर्ट करने की किसी को पड़ी ही नहीं है। अच्छा, कमिंग बैक टू द फिल्म, इस फिल्म में ऑर्गन डोनेशन के बारे में भी बहुत सारी पब्लिक को पहली बार पता चला था। और इस फिल्म की एक और हाईलाइट, इसका ये गाना, बप्पी लहरी का कॉम्पोजिशन, अनजान साहब का लिखा हुआ, बप्पी लहरी एस जानकी की आवाज। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

1989 की फिल्म परिंदा के गाने लिखने के लिए पहले गुलजार साहब फिर निदा फाजली साहब को अप्रोच किया गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई ये बात इस फिल्म के लिरिसिस्ट खुर्शीद हिलौरी साहब ने एक इंटरव्यू में शेयर की थी, लेकिन उन दोनों शायरों ने इसके गाने लिखने से मना कर दिया या कोई बात नहीं बन पाई। तब कुछ यूं हुआ कि फिल्म के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा फिल्म के डायलॉग राइटर इम्तियाज हुसैन साहब के यहाँ लंच पे गए, और जब लंच वगैरह रेडी हो रहा था तब उनके घर में एक ऑडियो कसर चल रही थी जिसमें कुछ गजलें चल रही थी। तब चोपड़ा साहब ने हुसैन साहब से पूछा कि भाई ये किसकी गजलें हैं, किसने लिखी? तो उन्होंने बताया कि खुर्शीद हिलौरी नाम के एक पोएट हैं, उनकी है। तब हिलौरी साहब को अप्रोच किया गया और तब उन्होंने परिंदा के ये आइकॉनिक गाने लिखे। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

directed by Rajendra Bhatia and so very well written by Moolraj Rajdhan. ये फिल्म में गुजराती प्ले चकदोल से अडेप्टेड है. इसमें किरण कुमार, असरानी, असरानी जी की वाइफ मंजू बंसल, राधा सलूजा, आई एस जौहर, ये एक्टर्स हैं. बहुत सारे एक्टर्स और हैं, लेकिन तो भी मेन लीड में मैं कहूंगी कोई एक्टर नहीं, एक फिल्म का किरदार है. इस किरदार का नाम है चंपक भूमिया. अच्छा, इस फिल्म के लिए ना असरानी साहब को बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था. लेकिन जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे उनका काम तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. लेकिन आई एस जौहर साहब ने जो कॉमेडी की है ना यार, इट इज टू गुड. ही ऑल्सो डिजर्व्ड एन अवार्ड फॉर दैट. एनीवे, जब मौका मिले ये फिल्म जरूर देखिएगा. बाय द वे, इसके बाद में रीमेक भी बने थे. एक तो मराठी फिल्म थी फेंका फेंकी, एंड देन 2008 की गोलमाल रिटर्न्स, उसका जो प्लॉट था वो भी इसी से इंस्पायर्ड था. फिलहाल के लिए वी टेक अ ब्रेक. इट इज अ म्यूजिकल ब्रेक. पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ. आप सुन रहे हैं मिर्च.

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: जंजीर फिल्म को हम एक डेकेड डिफाइनिंग फिल्म बोल सकते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और इस फिल्म के वन ऑफ द राइटर्स जावेद अख्तर साहब ने एक टीवी शो में इस फिल्म के बारे में सुनिए क्या शेयर किया था।
1: एक्चुअली इस कहानी का तो मैं क्रेडिट सलीम साहब को देना चाहूंगा। बेसिक लाइन है और जो कैरेक्टर है एंग्री यंग मैन का। अब जो हमने मनाई किस वक्त कि जब आरडी बर्मन पीक पे था, जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पीक पे थे, सुपरहिट म्यूजिक चल रही थी, राजेश खन्ना द रोमांटिक सिंगिंग स्टार, उस वक्त हमने एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जिसमें हीरो गाने नहीं गाता, रोमांस ही नहीं करता, जिसमें हीरो की कोई कॉमेडी नहीं। अब ये मार्केट के खिलाफ बात। अब ये एक टॉल सीरियस फेस का इंटेंस लड़का, यार ये तो अलग ही है, एक तो लंबा बहुत है यार, तो इतने लंबे हीरो नहीं होते थे।
0: वेल, इनके हिसाब से इस फिल्म के लिए किसको क्रेडिट दिया जाना चाहिए वो भी इन्होंने शेयर किया था। थोड़ी देर के बाद सुनते हैं। राइट हियर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Energy. It's hot.
1: Purani Jeans with Charu, only on

0: जंजीर फिल्म की सफलता का क्रेडिट किसे दिया जाना चाहिए? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस बारे में फिल्म के वन ऑफ द राइटर्स जावेद अख्तर साहब ने एक टीवी शो में सुनिए क्या शेयर किया था।
1: एक बात बताऊं, इस बारे में हम लोग की तो बहुत तारीफ होती रहती है, लेकिन एक इंसान जिसकी बहुत तारीफ होनी चाहिए उसका जिक्र नहीं होता, उसका नाम है प्रकाश मेहरा। प्रकाश मेहरा ने ये कहानी ली और ये उनका पहला प्रोडक्शन होने वाला था, और ये कहानी हर सक्सेसफुल हीरो ने रिजेक्ट कर दी। हर हीरो कह रहा है कि कहानी ठीक नहीं है, मैं नहीं करूँगा। उसने कहा कि बनाऊंगा तो मैं यही, मैं सलाम करता हूँ। उसके बाद ये बड़ा अच्छा हुआ कि हर हीरो ने रिफ्यूज कर दिया। ये हमारी किस्मत थी कि हमें अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर इस रोल के लिए।
0: क्या बात है साहब, ये जिस तरह से बात करते हैं ना मजा आ जाता है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: आपके दिल में जो थोड़ी सी जगह मिल

खयाम साहब का कंपोज किया हुआ गाना थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और आपको पता है खयाम साहब ने अपने उसूलों अपने प्रिंसिपल्स की वजह से बहुत सा काम खोया है, मतलब उनके हाथ से वो काम निकल गया है, वो अपॉर्चुनिटीज चली गई। क्या होता था, काफी फिल्मों में उनको ऐसा कहा जाता था कि कोई प्री एग्जिस्टिंग ट्यून है, कोई वेस्टर्न ट्यून है, उससे आप सैंपल कर लीजिए या उसको कॉपी कर लीजिए और हमारी फिल्म के लिए इस तरह का गाना बना दीजिए। इस बात से खयाम साहब ओके नहीं होते थे। उनका कहना था कि ऑलरेडी अगर ट्यून एग्जिस्ट कर रही है तो मैं क्या बनाऊंगा, मेरी कॉम्पोजिशन कहाँ से हुई। ऐसे थे उनके उसूल, ऐसे थे उनके एथिक्स। चलिए इसी बात पे खयाम साहब का एक और गाना सुनते हैं, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। दर्द फिल्म का ये गाना है पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची के साथ मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

द वेरी अडोरेबल राकेश बेदी साहब। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बहुत सारे लोगों के लिए वो स्पेशल हैं, राइट फ्रॉम द 80s, जब वो चश्मे बद्दूर, एक दूजे के लिए और पता नहीं कितनी सारी फिल्मों में आए थे, और उससे ज्यादा टेलीविजन शोज में ज्यादा पॉपुलर हुए थे। यू नो शोज लाइक ये जो है जिंदगी, श्रीमान श्रीमती, फिल्मी चक्कर, ये दुनिया गजब की, जबान संभाल के, उसके बाद फिर यस बॉस, एंड देन ऑफ कोर्स भाभी जी घर पे है हमें, अंगूरी भाभी के डैडू भूरे लाल के रोल में। वैसे आपको पता है राकेश बेदी साहब ने FTII पुणे से जब अपनी एक्टिंग की पढ़ाई पूरी की थी, उसके बाद जो पहली फिल्म साइन की थी वो थी 1973 की अनामिका, संजीव कुमार जया बच्चन वाली जो फिल्म थी, लेकिन फिर उस फिल्म से उनको रिप्लेस कर दिया गया था। फिर उनकी शुरुआत आई थिंक 1979 में हुई थी विद द फिल्म कॉल्ड हमारे तुम्हारे, जिसमें वो सपोर्टिंग कास्ट में थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची,
2: रेडियो मिर्ची के साथ।
3: मिर्ची, इट्स हॉट।
4: हम्म

मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद जारू, ओनली ऑन मिर्ची।

वाह वाह वाह वाह वाह, कुछ लाइंस पढ़ रही थी मैं, आपको भी पढ़ के सुनाती हूँ। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो पोएट का नाम है संतोष खेरवरकर और ये लिखते हैं, कितनी गहरी ये शनासाई लगे, शनासाई मतलब जान पहचान, कितनी गहरी ये शनासाई लगे, झूठ वो बोले तो सच्चाई लगे, इतना पागल हूँ मैं उनके इश्क में, भीड़ में भी मुझको तन्हाई लगे, तुम नहीं हो साथ जब मेरे सनम, शूल जैसी मुझको ये पुरवाई लगे, बागबां तेरी बदौलत ही यहाँ, हर कली गुलशन की मुरझाई लगे, चाहता हूँ इस कदर तुझको कि अब हर बुराई तेरी अच्छाई लगे। आय हाय, चलिए इसी बात पे अच्छा सा गाना सुन लेते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

1983 की सुपरहिट फिल्म हीरो जैकी श्रॉफ साहब की डेब्यू फिल्म थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक्चुअली एज अ हीरो एज अ मेन लीड डेब्यू फिल्म थी, उससे पहले वो देवानंद साहब की स्वामी दादा फिल्म में एक छोटू मोटू सा रोल कर चुके थे। अच्छा, फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई इस फिल्म के लिए पहले संजय दत्त को कास्ट कर चुके थे, लेकिन संजय दत्त तब अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज से डील कर रहे थे, तो कुमार गौरव साहब के पास गए सुभाष घई। लेकिन उनके फादर राजेंद्र कुमार ने इतनी ज्यादा बड़ी प्राइस कोट की कि सुभाष घई ने हाथ जोड़ लिए कि भाई मैं किसी स्टार सन के साथ ये फिल्म नहीं बनाऊंगा, मैं किसी न्यू कमर को साइन कर लूंगा। एंड देन जैकी श्रॉफ साहब केम इन द पिक्चर। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

अमर अकबर एंथनी फिल्म में अकबर की मोहब्बत का नंबर वन दुश्मन था उसका ससुर तैयब अली, यानी कि मुकरी जी। मिर्ची सुन रहे आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और मैं ना कुछ दिन पहले कोई बहुत ही पुरानी पिक्चर देख रही थी, कोई लेट 40s टाइप की पिक्चर, उसमें भी मुकरी साहब थे। तो मैं सोच रही थी कितने पुराने, मतलब कितने पहले से फिल्मों में काम कर रहे थे। एंड देन मैंने रेड अबाउट हिम, आई गॉट टू नो कि मिड 40s में उनका करियर शुरू हुआ था और 50 साल के करियर में उन्होंने कुछ 600 फिल्मों में काम किया। और जब भी वो स्क्रीन पे आते थे ना, मजा सा आ जाता था, ऐसा लगता था कुछ तो मजेदार होने वाला है भाई। और उनका एक और यादगार किरदार, शराबी का नथु लाल, मुझे हो तो नथु लाल जैसी हो वरना ना हो। हैट्स ऑफ टू दिस अमेजिंग कॉमेडियन। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

आपको पता है 1982 में जब किशोर कुमार को फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड नहीं मिला था तो वो बहुत खुश हुए थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, क्योंकि उस साल ये अवार्ड उनके बेटे अमित कुमार को मिला था इसी गाने के लिए जो हमने सुना था लव स्टोरी फिल्म का। और उस साल नॉमिनेशन में किशोर दा के जो गाने थे वो थे हमें तुमसे प्यार कितना, कुदरत का, और छूकर मेरे मन को, याराना फिल्म का। और किशोर दा ने अमित कुमार को कॉल करके इन्फॉर्म किया, अमित कुमार तब कहीं आउट ऑफ टाउन थे, तो उन्होंने कॉल करके इन्फॉर्म किया कि बेटा तूने मुझे हरा दिया। उनकी ये हार पता नहीं कितनी सारी जीत से ज्यादा वैल्यूएबल होगी, है ना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

जान के लाले बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे।

drunky life. Drunkard husband, fighter wife. बीवी बिगड़े, शौहर अकड़े, रोज के झगड़े, रोज के लफड़े, लफड़े झगड़े, अरे झगड़े लफड़े, लफड़े लफड़े झगड़े झगड़े लफड़े झगड़े झगड़े लफड़े आ

हंस के बोली, जाने तमन्ना, अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार।

0: के भागा भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा।
1: बोला देवी माफ कीजिए मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती लुटी खुशी फिर लौट के आई। आई रे आई रे आई रे आई रे आई। पीना छूट गया, पीना छूट गया, बीवी ने इतना दिया प्यार पीना छूट गया। फिर दोनों ऐसे मिले हे हे, फिर दोनों ऐसे मिले प्यार में ही डूब गए। प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार, जहां चारिया

हरी मिर्ची, क्योंकि ऑलमोस्ट गारंटीड लगने लगा है। फॉर एग्जाम्पल वाइफ का स्पाई यूनिवर्स, एंड ये चीज बिल्कुल वैसी है जैसे T20 में आपकी कोई फेवरेट टीम, नेटफ्लिक्स पे कोई फेवरेट सीरीज जिसका एक सीजन खत्म होता नहीं कि अगले का वेट शुरू हो जाता है। विच मेक्स मी थिंक कि भाई ऑडियंस को क्या अब नए कैरेक्टर्स पसंद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि फ्रेंचाइज फीवर को जिस हिसाब से प्यार मिल रहा है इज स्पीकिंग वॉल्यूम्स कि भाई ऑडियंस अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के साथ दोबारा टाइम स्पेंड करना चाहती है। बट बाबू मोशाय, फ्रेंचाइज सिर्फ नाम से नहीं चलती, कॉन्टेंट से भी चलती है। एंड हियर्स मी कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि भाई आज धमाल 4 जो रिलीज हुई है ये मेरे होप्स को शैटर ना करे। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।